0: गुड मॉर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान, और आज का दिन थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा स्पेशल है। आज है 2 अक्टूबर यानी कि महात्मा गांधी इनकी जयंती। गांधी जयंती की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और गांधी जी को हमने बुक्स में पढ़ा, नोट्स में लिखा है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी सीख शायद किसी बुक में नहीं है, हमारे बिहेवियर में दिखनी ही चाहिए। सच बोलना, किसी के साथ बुरा ना करना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बदलाव की शुरुआत खुद से करना। तो आज के दिन सिर्फ गांधी जी के फोटो को सैल्यूट नहीं, उनके किसी एक विचार को अपनी लाइफ में अप्लाई करने की भी कोशिश कीजिएगा। बस गांधी जी के विचार अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिएगा और जिंदगी गुलजार बनाइएगा। जैसे कि गांधी जी कहते हैं, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया को बदलने से पहले बदलाव की शुरुआत खुद से कीजिएगा। क्या है ना, हम सभी लोग दुनिया को बदलना चाहते हैं लेकिन खुद को कभी बदलना नहीं चाहते। तो यही गांधी जी का विचार था, यही गांधी जी का थॉट था, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, समझे। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के शो का आगाज करते हैं। बहुत सारी बातें होगी, मुलाकातें होगी, लेकिन कुछ ही देर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 2 अक्टूबर, आरजे अदनान आपके साथ है। ये तारीख ना तो हमारे इतिहास में दो महान हस्तियों के जन्मदिन के रूप में दर्ज है, एक तो महात्मा गांधी और दूसरी ओर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी का जीवन हमें सादगी और ईमानदारी का पैगाम देता है। देश की राजनीति में जहां सत्ता और शक्ति की होड़ होती है, वहीं शास्त्री जी ने दिखाया कि असली ताकत साधारणपन और सच्चाई में छुपी होती है। आपको याद होगा उनका दिया हुआ नारा, जय जवान जय किसान। ये सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि उस समय के भारत की असली जरूरत और आत्मा थी। एक तरफ सीमाओं पर खड़े जवान और दूसरी तरफ खेतों में मेहनत करता किसान, यही देश की रीढ़ है। शास्त्री जी का व्यक्तित्व हमें सिखाता है कि बड़ा बनने के लिए ऊंचे पद की जरूरत नहीं बल्कि ऊंचे विचारों की जरूरत होती है। उनकी सादगी इतनी थी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो आम आदमी की तरह जीवन जीते थे। आज उनके जन्मदिन पर हम सबको सोचना चाहिए, क्या हम अपनी जिंदगी में इतनी ईमानदारी, सच्चाई और सादगी पा रहे हैं क्या? क्योंकि शास्त्री जी ने जो आदर्श हमें दिए हैं, वही भारत की असली पहचान है। तो आइए आज के दिन हम उन्हें याद करते हुए एक वादा करें कि मेहनत, ईमानदारी और सादगी को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। ये शास्त्री जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। स्टे ट्यून्ड ऑन MGM 90.8 FM.
1: Only on MGM 90.8.

0: आज बात करते उस इंसान की जिसने पूरी दुनिया को सिखाया कि ताकत तलवार या बंदूक से नहीं, सच से आती है। महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा मंत्र सत्य ही ईश्वर है। महात्मा गांधी जी की जयंती यानी कि बापू की आज जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वैसे महात्मा गांधी जैसा बनना, उनके विचारों पर चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। गांधी जी मानते थे कि इंसान चाहे किसी भी धर्म को माने, किसी भी भगवान को पूजे, लेकिन अगर उसके जीवन में सत्य नहीं है तो वो पूजा अधूरी है। सच के बिना इंसान का चरित्र अधूरा है। उन्होंने कहा था, अगर मैं सच के साथ हूँ तो मुझे ईश्वर की तलाश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। सोचिए दोस्तों, जिंदगी की कितनी गहरी बात है। जिंदगी में कई बार सच बोलना आसान नहीं होता। सच बोलने पर लोग नाराज हो जाते हैं, कभी कभी तो मुश्किलें भी बढ़ जाती है, लेकिन गांधी जी ने हमें यही तो सिखाया है कि असली जीत सच के साथ खड़े रहने में है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। आज के समय में जब झूठ, दिखावा और स्वार्थ आम हो चुका है, गांधी जी की ये सीख हमें और भी ज्यादा जरूरी लगती है। अगर हम अपने रिश्तों, अपने काम और अपने सपनों में सच को जगा दे तो जिंदगी कितनी साफ और आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, इस सुबह का संकल्प यही है कि हम सच बोलने, सच के साथ खड़े होने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सच में ही भगवान है और सत्य में ही असली शक्ति है। याद रखिएगा, गांधी जी ने जो कहा था कि सत्य ही ईश्वर है। ऐसे अपन गांधी विचारों के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की जयंती। स्टे ट्यून विद आरजे अदनान इन द शो।
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

चलिए देखते हैं आपको गांधी जी के बारे में कितना कुछ पता है। हेलो, यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और आज महात्मा गांधी जी की जयंती हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसी मौके पर एक सवाल मैं आपको पूछूंगा। गिफ्ट जीतने का मौका मैं आपको दूंगा, उसका जवाब आप मुझे बताएं।

0: ना। सवाल कुछ ऐसा है कि गांधी जी ने भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो सवाल फिर से एक बार दोहराता हूँ कि गांधी जी ने भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, और इसका जवाब आप मुझे बताइएगा। ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन की जरूरत तो नहीं है आपको, आप इसका जवाब मुझे तुरंत व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। चलो ठीक है, ऑप्शन दे ही देता हूँ। पहला है चंपारण सत्याग्रह, दूसरा दांडी, तीसरा खेड़ा सत्याग्रह। तो इन तीनों में से एक जवाब है, तो बताइए कौन सा है, ए बी और सी, चंपारण, दांडी या खेड़ा। जवाब व्हाट्सएप कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर, एंड सुनते रहिए
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की जयंती। वैसे गांधी जी के तीन बंदरों के बारे में तो हमें पता ही होगा, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। पर हम अमल करते हैं क्या? तो सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी के पहले बंदर के बारे में, बुरा मत देखो। हमारी आंखें सिर्फ देखने का नजरिया है बल्कि हमारे मन और हमारे दिमाग का दरवाजा भी है। जो कुछ हम देखते हैं वही हमारे विचार और कर्मों को आकार देता है। अगर हम हमेशा निगेटिव चीजें देखते रहेंगे, हिंसा, नफरत, ईर्ष्या, तो धीरे धीरे वैसा ही सोचने और करने लगेंगे। गांधी जी ने कहा था कि बुरी चीजों का देखना उन्हें बढ़ावा देना है। इसलिए अगर हमें अपनी सोच और साफ और सकारात्मक रखनी है तो सबसे पहले हमें अपनी नजर बदलना होगी। आज की दुनिया में सोशल मीडिया पर न्यूज में हर तरफ बस नकारात्मक चीजें दिखती है, लेकिन असली ताकत यह है कि हम क्या देखना चाहते हैं। अगर हम अच्छाई को देखें, लोगों की भलाई को देखें, लोगों का अच्छा काम देखें, तो हमारी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। तो दोस्तों, आज का संकल्प यही है कि बुरी चीजों को देखने से बचना है और अपनी नजर को अच्छाई पर टिकाना है, क्योंकि जैसा हम देखते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसीलिए तो गांधी जी का जो पहला बंदर है वो कहता है, बुरा मत देखो। इससे क्या कुछ होगा ये अभी हमने जाना। तो ट्राई करोगे यार, बुरा मत देखो। जब आप ट्राई करोगे या अमल करोगे ना, तो आपकी जिंदगी में गुलजार बनने के एक कगार पर खड़ी हो जाएगी। तो गांधी जी के विचारों पर चलना बहुत आसान है, बस अमल करते रहना है।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, SIDCO N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7

0: वी आर सेलिब्रेटिंग महात्मा गांधी जयंती। सो आज गांधी जयंती आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आरजे अदनान आपके साथ है। और गांधी जी के तीन बहुत इम्पोर्टेंट बंदर हम सभी को पता है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। वैसे बुरा मत देखो के बारे में अभी हमने जाना, तो अब बात करते हैं बुरा मत सुनो के बारे में। गांधी जी का दूसरा बंदर है बुरा मत सुनो। हमारे कान वो रास्ता है जिनमें बातें सीधे दिल और दिमाग तक पहुंचती है। अगर हम लगातार झूठ, गालियां, चुगली और नफरत सुनते रहेंगे तो हमारा मन भी वैसा ही बन जाएगा। गांधी जी ने कहा था कि जो बातें हम सुनने वही हमारे अंदर घर बना लेती है। अगर हम बुरे शब्दों को सुनते रहेंगे तो गुस्सा और कड़वाहट हमारे भीतर भर जाएगी, लेकिन अगर हम अच्छे विचार, प्रेरणादायी बात या किसी का हौसला बढ़ाने वाले शब्द सुनते हैं, दिल भी साफ और मजबूत रहेगा। सोचिए दोस्तों, अगर हर वक्त कोई आपके कान में दूसरों की बुराई करता रहे तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही सोचने लगते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे गीत, ज्ञानवर्धक बातें या किसी बड़े की सीख सुनते हैं तो मन में सुकून और सकारात्मक यानी कि पॉजिटिविटी आ ही जाती है। आज के वक्त में ना तो हमें ये तय करना होगा कि हम अपने कानों को किसके लिए खोलते हैं। बुरी बातों को सुनकर चुपचाप जगह न दे कोई, बल्कि कोशिश करें कि हमेशा वही सुने जो आपके जीवन को और अच्छा बनाए। तो दोस्तों आज का संकल्प यही है कि बुरी बातें ना सुने और अगर सुन भी ले तो उन्हें दिल में जगह ना दे, क्योंकि आत्मा वही बनती है जो कान सुनते हैं। इसलिए कहा है गांधी जी के बंदरों ने, बुरा मत सुनो, याद रखिए और सुनते रहिए अच्छा, मतलब मेरे साथ मेरा ये अच्छा शो जिसका नाम है
1: ओनली ऑन MGM 90.8 FM।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: है तो भगवान बैठाए। हाय हाय हाय हाय। कुछ लोगों का धंधा हुआ है
1: क्या
0: मंदिर

0: और अब आते हैं गांधी जी के तीसरे बंदर की सीख पर, बुरा मत बोलो। आरजी अदनान आपके साथ, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की जयंती और इसी मौके पर बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी के तीन बंदरों के बारे में जो कि हमें जिंदगी की बहुत अहम बात सिखाते हैं। तो बात करते हैं बुरा मत बोलो की। दोस्तों, शब्दों की ताकत दुनिया की किसी भी ताकत से कम नहीं होती। एक शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है और वही शब्द किसी की जिंदगी बदल भी सकता है। गांधी जी कहते थे, अगर आप अपने शब्दों पर नियंत्रण पाले तो आप हिंसा के बिना भी शांति फैला सकते हैं। क्योंकि कई बार हम गुस्से में ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो तीर की तरह होते हैं, तीर लगने के बाद वापस नहीं आता, वैसे बुरे शब्द दिल में हमेशा चुभ जाते हैं। सोचिए, किसी को डांटने से उसका हौसला टूट सकता है, लेकिन उसी इंसान को प्यार से समझाने पर वो जीवन भर आपका आभारी रहेगा। ये शब्दों का जादू है। गांधी जी का संदेश साफ था, बोलो तो ऐसा बोलो जिससे इंसानियत मजबूत हो, किसी का दिल न दुखे, बल्कि किसी का हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज महात्मा गांधी जयंती के बीच हम ये संकल्प करते हैं कि हम अपने शब्दों को हथियार नहीं दुआ बनाएंगे। हम बुरे शब्दों से नहीं, अच्छे शब्दों से लोगों के दिल जोड़ेंगे। क्योंकि बुरे शब्द बांटते हैं और अच्छे शब्द जोड़ते हैं, और जोड़ने का नाम ही जीवन है। तो यही है महात्मा गांधी जी के तीन बंदरों के अहम मतलब, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। सुयो, ये बात याद रखिएगा, जिंदगी गुलजार बनाइएगा और सुनते रहिएगा।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: एंग्जाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: Let's celebrate Gandhi Jayanti. You're listening to MGM 90.8 FM. RJ Adnan aapke saath hai. और आज इस मौके पर ना तो मैंने आपको एक गिफ्ट जीतने का मौका दिया था, उसके लिए एक सिंपल सा और आसान सा सवाल मैंने आपको पूछा था. और सवाल कुछ ऐसा था कि गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था, पहला सत्याग्रह भारत, वो कहां पर था. और इसका जवाब है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन ए. और एकदम सही जवाब दिया है प्रणीत जाधव ने. सो कांग्रेचुलेशन प्रणीत जाधव जी, आज आप विनर बन चुके हो. आपको हमारी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन. एंड ऐसे आप भी गिफ्ट जीत सकते हो. सवालों के जवाब देते रहिए और सुनते रहिए.
1: Only on MGM 90.8 FM.
2: मेरा रंग दे बसंती चोली.

0: मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आरजे अदनान एंड यू आर लिसनिंग MGM 90.8 FM और आज का दिन ना तो हम सभी के लिए बहुत ही स्पेशल है और हमारे लिए तो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज सिर्फ एक रेडियो स्टेशन की एनिवर्सरी नहीं है, आज सेलिब्रेशन है उन 9 सालों का जहां रेडियो ने सिर्फ गाने नहीं बजाए, आपसे बातें की, आपकी कहानियां सुनी और आपके स्पेशल मोमेंट का हिस्सा बने और कभी हंसी, कभी इन्फॉर्मेशन तो कभी एक छोटी सी मोटिवेशन के साथ आपके दिन को थोड़ा और स्पेशल बनाया। MGM 90.8 FM के 9 साल और इन 9 सालों के सफर में सबसे इम्पोर्टेंट कौन रहा पता है? आप हमारे लिस्नर्स यानी कि आप जो हमें सुनते हो ना वो सबसे स्पेशल है। तो आज का पूरा शो भी डेडिकेट है आपको, आपकी यादों और MGM रेडियो के खूबसूरत सफर को। चलिए फिर सेलिब्रेट करते हैं 9 इयर्स ऑफ MGM 90.8 FM MGM रेडियो, क्योंकि साथ है तो बात है। सो हैप्पी एनिवर्सरी MGM रेडियो, और भी ढेर सारी बातें होगी, स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: 9 साल पहले एक नई शुरुआत हुई थी। MGM ट्रस्ट के अंदर एक नई आवाज ने छत्रपति संभाजीनगर के सफर में कदम रखा था। वो है MGM 90.8 FM। शुरुआत छोटी थी लेकिन सपना बड़ा था। लोगों तक सिर्फ आवाज नहीं, एक कनेक्शन पहुंचाना था। और फिर वक्त बदलता गया, रेडियो बदला, टेक्नोलॉजी बदली, शो बदले, हमारे प्रोग्राम्स बदले, और इन 9 सालों में MGM रेडियो ने भी खुद को वक्त के साथ बदलते हुए देखा है। नए आरजेस आए, नए शोज आए, नई कहानियां जुड़ी, नए लिसनर्स जुड़े, लेकिन एक चीज हमेशा सेम रही, आपसे जुड़े रहने की कोशिश। और आज 9 साल बाद उसी सफर की एक खूबसूरत मंजिल पर MGM 90.8 FM आज भी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज का दिन सिर्फ एनिवर्सरी नहीं है, ये सेलिब्रेशन है 9 साल के सफर का, 9 साल की यादों का, और सबसे बढ़कर आपका और MGM रेडियो का। सो कुछ आपकी भी यादें होगी हमारे साथ वाली, तो जरा शेयर कीजिएगा, कॉल कीजिए 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर 9359320080 एंड स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: हेलो, क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बढ़िया हो तो होगी अभी आप.
1: Only on MGM 90.8 FM.
0: तो बात कुछ ऐसी है कि देखो भाई साहब, शो में तो मेरी और आपकी बातें तो होती रहती, मुलाकातें होती रहती, लेकिन आफ्टर शो भी ना तो हम कनेक्ट रह सकते हैं. वो कैसे जानते हो? सोशल मीडिया के जरिए. सो इंस्टा आईडी याद रखिएगा, आरजे अदनान इस बंदे का इंस्टा आईडी है. वहाँ पर बिना तो मनोरंजनात्मक चीज़ें जो होती वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि इंस्टा के ऊपर तो भाई क्या होता है, विदाउट फिल्टर वाली चीज़ें होती है और मस्त मौला माहौल होता है. तो आफ्टर शो भी हम कनेक्ट रह सकते हैं. सो मेरा इंस्टा आईडी आरजी अदनान, उसको फॉलो कीजिएगा. कुछ मैं रील्स अपलोड करता हूँ ना, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगी, चाहे फिर वो कुछ सॉन्ग डिकोडिंग के हो, शायरी के हो, कॉमेडी के हो, ऐसा मिक्स एकदम कल्चर होता है. सो देखिएगा जरूर. और हाँ, इसी के साथ MGM 90.8 FM का ऑफिशियल इंस्टा आईडी है, उस पर भी जाकर आप फॉलो नाम का जो बटन है वो प्रेस कर सकते हो. और बाकी शो के रिलेटेड कुछ सजेशन हो गए, कुछ फीडबैक हो गए, आप वहां पर DM में मुझे लिखकर भेज सकते हो. आईडी याद रखिए, आरजे अदनान. अज्ञान नहीं, वरना मेरा नाम का बदनाम करना बहुत अच्छे से आता है लोगों को, अदनान का अज्ञान कर देते हैं. RJ_ADNAN इतना याद रखिए. बाकी तो आप अगला गाना एंजॉय कीजिएगा. Only on MGM 90.8 FM.
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरओपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: पक्का जाना।
1: वेट, आई थिंक वी शुड गो दैट वे।
0: ये तो खराब है।
1: ये मेरा लकी चार्म है और ये मुझे हमेशा राइट डायरेक्शन देता है। समटाइम्स इन लाइफ यू जस्ट हैव टू लेट इट गो और उसी फ्लो में सही मंजिल मिलती है।

0: देखा क्या?
1: तू तो पंडा हीरो निकला बत्रा, मान गई
0: प्रमोशन हो गया कैप्टन बन गया हूँ।

0: बाकी सब ठीक,
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक,
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: बस चल रहा है भाई।
0: What about you?
2: हाँ चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक,
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक,
2: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक है ना?
1: हाँ ठीक है।
0: और तेरा?
2: बस चल

0: सुना है आजकल भेड़िए लोगों का कीटो डाइट चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है। व्हाट अबाउट यू? हाय

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांचे आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचवू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबिटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10 ते 3, संध्याकाळी 6 ते 7 आणि शनिवारी सकाळी 10 ते 3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: सोशल मीडिया और मोबाइल आज के वक्त में हर एक इंसान यूज करता है, चाहे फिर बच्चा हो या तो फिर बड़ा हो। तो बात कुछ ऐसी है कि तुम्हाला एक माहिती आहे का कि आपल्या भारतात किती टक्के मुलं आहेत जे मोबाईल वापरतात, म्हणजे 10 ते 19 वर्षांची किती मुलं आहेत? तर टोटल लोकसंख्येपैकी ना 91% मुलं ते स्मार्टफोन युजर्स आहेत। तर हे एक रिपोर्ट आलेली आहे ज्यात हे सर्व आकडेवारी समोर आलेली आहे। 8 ते 18 वर्षांच्या 30% मुलांकडे पर्सनल फोन आहे आणि 62% मुलं आपल्या पॅरेंट्सचा फोन वापरतात। आणि 2026 सुरुवातीपर्यंत देशात 10 ते 14 वर्ष वयोगटातील सुमारे 83% मुलांपर्यंत स्मार्टफोन पोहोचला आहे। आणि अंदाजे ही मुलं 7 ते 10 तास दररोज आपला स्क्रीन टाइम वाढवत आहेत, म्हणजे हे खूप डेंजर झालेले आहे। आता तुम्ही विचार कराल की यार आज के वक्त में तो स्मार्टफोन चाहिए ही, हर एक चीज स्मार्टफोन के जरिए होती है, तो मना तो कोई नहीं कर रहा स्मार्टफोन यूज करने के लिए। लेकिन 10 से 19 साल की जो उम्र है उस उम्र में बच्चे तकरीबन 7 से 10 घंटे स्मार्टफोन यूज करते होंगे, तो ये थोड़ी सोचने वाली बात है। आणि यामुळे काय होते माहिती का कि स्मार्टफोन मध्ये आपले मुलं काय बघतायत, कोणते व्हिडिओज बघतायत, कोणत्या वेबसाईटवर जातायत याकडे सुद्धा अनेक पॅरेंट्स लक्ष नाही आहे। त्यामुळे 60%हून अधिक सायबर गुन्हे हे अश्लील कॉन्टेंटचे सुद्धा आहेत जे की मुलांविरुद्धचे आहेत। यावर सुद्धा थोडं फोकस करणे गरजेचं आहे। अब देखो टेक्नॉलॉजी को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसके साथ हमें आगे बढ़ना है। मोबाइल कितना यूज करना, कितने वक्त तक यूज करना, स्क्रीन टाइम कितना अच्छा है और कितना नहीं, ये सब बातें बिना पेरेंट्स ने अपने बच्चों को समझानी चाहिए और स्मार्टफोन का स्मार्ट तरीके से यूज कैसा हो इस पर भी फोकस करना चाहिए। जैसे मुझे तो यार मेरा स्मार्टफोन कब मिला था पता है? मैं ग्रेजुएशन में आया था तब, उसके पहले तक तो छोटा हैंडसेट यूज करते थे और स्कूल के जमाने में तो फोन था ही नहीं, तब तो फोन वगैरह कुछ हुआ ही नहीं करता था। वैसे आपने कब पहला स्मार्टफोन यूज किया था बताइए डीएम की जगह इंस्टा पर आरजे अदनान इस इंस्टा पेज पर, एंड स्टे ट्यून्ड।
1: Only on MGM 90.8 FM.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेट्रिओ रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UET क्लिनिक, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

0: रिपोर्टें क्यों नहीं?
1: एक महीने में चौथा केस सामने आया अपने शहर में साइबर क्राइम का। हर दिन कुछ ना कुछ साइबर फ्रॉड अपने शहर में हो रहा है। बिजनेसमैन है, उसके अकाउंट से तकरीबन 50 लाख गायब हो गए। जी हाँ, एक गलती पूरा नुकसान करवा सकती है, और वो भी व्हाट्सएप के जरिए। सबसे पहले उनका व्हाट्सएप हैक किया गया, उसके बाद फिर बाकी चीजें प्रोसेस करते हुए उनके अकाउंट से 50 लाख गायब हो गए। इस वजह से जरा आप भी सेफ रहिएगा। आप सवाल उठता है कि सेफ कैसे रहना और व्हाट्सएप को सेफ कैसे रखना। देखो, बात सिंपल है। व्हाट्सएप का ना टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कीजिएगा, जिसमें 6 नंबर का एक पिन कोड आता है, वो डायल कीजिए। इससे टू स्टेप वेरिफिकेशन आपका ऑन रहता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आरटीओ चालान, बिजली का बिल, पानी का बिल, क्यूआर कोड, ऐसे अननोन नंबर से आपके पास कुछ आ रहे होंगे मैसेज तो, या एपीके फाइल होगी, स्पेशली एपीके फाइल याद रखिएगा, वो डाउनलोड मत कीजिएगा। अगर वो डाउनलोड करोगे तो आपका मोबाइल हैक हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। और इसी के साथ, और व्हाट्सएप में जाकर ऑटो डाउनलोड वाली सेटिंग है ना, उसे ऑफ कीजिएगा, ताकि जो भी आपके पास ऐसे फाइल आ रहे हैं अननोन वाले, वो अपने आप डाउनलोड ना हो सके। और हाँ, किसी और के डिवाइस पर आप अपना व्हाट्सएप ओपन कर रहे होगे तो उसे लॉग आउट कीजिएगा। एंड अननोन कंप्यूटर पर या अनजान इंसान के फोन, लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर व्हाट्सएप लॉगिन मत कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारा जो आईडी पासवर्ड है वो किसी को भी मत बताइएगा। ये बेसिक चीज है, अगर आपने इतनी भी फॉलो की ना, तो आपका व्हाट्सएप और आपका अकाउंट और आपका फोन सेफ रह सकता है। तो इन सब चीजों को फॉलो कीजिएगा और साइबर फ्रॉड से बचिएगा, क्योंकि आपकी तो मेहनत की कमाई होती है, लेकिन सामने वाला एक झटके में पूरा उड़ा ले जाता है। और हाँ, अपने मम्मी पापा को, दादा दादी को ये सब चीजें बताइए, तो उनके फोन पर भी, उनके व्हाट्सएप पर भी ऐसा कुछ मैसेज आए तो थोड़ा अलर्ट रहे। समझे? Be safe and stay tuned.
2: Only on MGM 90.8.

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, रेडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: 93.8 FM.
1: धुरंधर मूवी का ये ट्रैक क्या लगता है ये ओरिजिनल होगा? नहीं,
2: तो
1: 1960 में मूवी आई थी बरसात की रात। उस मूवी के अंदर कवाली थी जो कि मन्ना डे, आशा भोसले एंड मोहम्मद रफी साहब ने गाया था, और उस कवाली से लिया गया धुरंधर मूवी का ये गाना है। अब इसका मतलब क्या होता है? ना तो कारवा की तलाश है, ना हम सफर की तलाश है, यानी कि अब इंसान को ना तो भीड़ की जरूरत है, ना किसी के साथ चलने की। सफर में इतना मुकम्मल और इतना पूरा हो चुका है कि उसे किसी और के सहारे की जरूरत ही नहीं है। और इस गाने के एंड में एक शायरी आती है जो कि SRK को बहुत पसंद है। नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा,
3: जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं मरता भी नहीं, जब मैं

0: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
1: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
0: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
1: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर। डोळ्यांच्या आरोग्याशी तडजोड नको, कारण वेळेवर केलेली तपासणी वाचू शकते तुमची दृष्टी। डॉक्टर अभिजित गोरे, वेटियो रेटिना सर्जन यांचं गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, उपलब्ध सुविधा, डायबेटिक रेटिनोपॅथी स्क्रीनिंग अँड ट्रीटमेंट, आरोपी स्क्रीनिंग, UVT स्क्रीनिंग, रिटायनल डिटॅचमेंट सर्जरी, ऑक्युलर ट्रॉमा अँड कॉम्प्लिकेटेड कॅटरॅक्ट मॅनेजमेंट। वेळ सकाळी 10-3, संध्याकाळी 6-7 आणि शनिवारी सकाळी 10-3। पत्ता, गोरे नेत्र रुग्णालय आणि लेझर सेंटर, प्लॉट नंबर 51, स्वातंत्र्य सैनिक कॉलनी, लिटल एंजल शाळेसमोर, नागेश्वरवाडी रोड, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर। कॉन्टॅक्ट नंबर 9422653331।

हेलो, क्या हाल चाल? एकदम मस्त। तो बढ़िया हो तो हो गए अभी आप। तो बात कुछ ऐसी है कि देखो भाई साहब, शो में तो मेरी और आपकी बातें तो होती रहती, मुलाकातें होती रहती, लेकिन आफ्टर शो भी ना तो हम कनेक्ट रह सकते हैं। वो कैसे जानते हो? सोशल मीडिया के जरिए। सो इंस्टा आईडी याद रखिएगा, RJ अदनान इस बंदे का इंस्टा आईडी है। वहाँ पर भी ना तो मनोरंजनात्मक चीज़ें जो होती वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि इंस्टा के ऊपर तो भाई क्या होता है, विदाउट फिल्टर वाली चीज़ें होती है और मस्त मौला माहौल होता है। तो आफ्टर शो भी हम कनेक्ट रह सकते हैं। सो मेरा इंस्टा आईडी है RJ अदनान, उसको फॉलो कीजिएगा। कुछ मैं रील्स अपलोड करता हूँ ना, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगी, चाहे फिर वो कुछ सॉन्ग डिकोडिंग के हो, शायरी के हो, कॉमेडी के हो, ऐसा मिक्स एकदम कल्चर होता है। सो देखिएगा जरूर। और हाँ, इसी के साथ MGM 90.8 FM का ऑफिशियल इंस्टा आईडी है, उस पर भी जाकर आप फॉलो नाम का जो बटन है वो प्रेस कर सकते हो। और बाकी शो के रिलेटेड कुछ सजेशन हो गए, कुछ फीडबैक हो गए, आप वहां पर DM में मुझे लिखकर भेज सकते हो। आईडी याद रखिए, RJ अदनान, अज्ञान नहीं, वरना मेरा नाम का बदनाम करना बहुत अच्छे से आता है लोगों को, अदनान का अज्ञान कर देते हैं। RJ_ADNAN इतना याद रखिए। बाकी तो आप अगला गाना एंजॉय कीजिएगा। Only on MGM 90.8 FM.

सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आई का ओ जर्नल सिंह, ओ जर्नल सिंह, अरे तू भी सुनो पापे।